0: stuff. So itne beautiful colors. You're right. मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ लाल हो सकते.
1: हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसे कभी सोचा नहीं था कि मेरे को पेड़ पे पीच कलर दिखेगा
0: बिना फूल के. मतलब पेड़ पे कलर इज लाइक फॉर अस इट्स लाइक ग्रीन ब्राउन एंड कलर ऑफ द फ्लावर.
1: पत्तों की बात कर रहा हूँ.
0: हाँ
1: मैंने इसे कभी सोचा नहीं था. एंड देयर इज दिस वो चेरी ब्लॉसम का पेड़.
0: हाँ हाँ पिंक.
1: हाँ तो नॉट ओनली चेरी ब्लॉसम का कलर अलग है ठीक है मतलब बहुत अलग है बट उसके पत्तों का भी कलर अलग है.
0: या दैट्स ट्रू.
1: मतलब उसके पत्तों पे भी कलर है बहुत सारे.
0: पत्तों पे ग्रीन कलर है बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन.
1: हाँ और अभी बिकॉज वो भी झड़ रहे हैं उनका भी कलर येलो मरून ऐसे हुआ जा रहा
0: है. नहीं वो तो है बहुत ब्यूटीफुल है. साउथ आइलैंड में ना एक जगह है.
1: साउथ आइलैंड में बहुत जगह है.
0: मतलब एक जगह है जहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं. आई वाज देयर लाइक फ्यू इयर्स अगो. आई वाज देयर ड्यूरिंग दिस टाइम अप्रैल मई में मैं वहाँ पे थी और मुझे मतलब आई टुक सम फोटोज एंड आई फेल इन लव विद दोज फोटोज बिकॉज ऑफ द कलर्स. So if somebody asks me what is your favorite season in New Zealand, I always say autumn. I know matlab summer bhi hai but autumn is like because of the colors I just love autumn.
1: Ha. For me autumn has been like very short always.
0: Okay.
1: Theek hai up until
0: short hi hota na.
1: Ha matlab short matlab itna short ke matlab mereko pata bhi nahi tha ki autumn exactly hota kya hai. Theek hai kyunki Being in Mumbai, मेरे को इतना ज्यादा कुछ दिखा नहीं था या फिर मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया था. बट यहाँ पे इट्स जस्ट डिफरेंट. ओके एंड पामी में there is a street.
0: कहाँ पे?
1: पामी में there is a street. एलमीरा स्ट्रीट.
0: ओके
1: वो मेरा फेवरेट स्ट्रीट है.
0: अच्छा
1: किसी ने मेरे को दिखाया था कि ये एक स्ट्रीट है. मतलब मैं पैकेज से जा रहा था फ्लैटमेट के साथ जा रहा था तो उसने मेरे को बोला था मैंने तेरे को एक जगह दिखाता हूँ. हाँ ठीक है दिखा मेरे को. तो ऑन द वे टू पैकेज से उसने वो एलमीरा स्ट्रीट से लिया.
0: अच्छा
1: तो उसने मेरे को बोला कि ये वाला स्ट्रीट ना मेरा एकदम फेवरेट स्ट्रीट है.
0: अच्छा
1: मैं उसको पूछा कि क्यों तो उसने बोला कि तू अब देखेगा तब तेरे को खुद पता चलेगा. सो दैट्स वन स्ट्रीट जहाँ पे दोनों साइड पे सेम पौधे सेम पेड़ है. बड़े बड़े पेड़ और वो दोनों साइड से ऐसे एक टनल बनाते हैं.
0: अच्छा
1: ओके ना द थिंग इज ऐसा तो बहुत सारी जगह
0: बहुत सारे जगह
1: पे
0: ऐसा तो इंडिया में भी काफी जगह पे हमने देखा है.
1: हाँ लेकिन ये वाले स्ट्रीट पे ना पता नहीं क्यों इट फील्स सो सिमेट्रिक. दोनों साइड पे पौधे ऐसा लगता है कि इट इज सिमेट्रिक एंड नॉट जस्ट दैट इट कुड बी द ट्रीज इट कुड बी समथिंग एल्स और व्हाटएवर. हमेशा ऐसा लगता है कि जो पत्तियां है ना दे आर ग्लोइंग. हाँ ऐसा नहीं लगता है कि सनलाइट इज पासिंग थ्रू द लीव्स. ऐसा नहीं लगता.
0: Wow.
1: ऐसा लगता है कि
0: वो. So it becomes a canopy kind of thing.
1: It becomes a canopy.
0: Yeah.
1: और मेरे को नहीं पता कि वो स्ट्रीट में क्या स्पेशल है या फिर वो पेड़ों में क्या स्पेशल है. But it looks very nice.
0: जब मैं पहली बार न्यूजीलैंड आई थी ना तो मैंने क्राइस्टचर्च में लैंड किया था. And then I flew to Wellington and then I came to Pami of course. तो मैं जब पामी आई और बाकी जगह पे नहीं सोच रही थी यार ये मतलब कोई जगह कोई पेड़ के पत्ते इतने साफ कैसे हो सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता होता कि ये लोग रोज सुबह पानी डालते होंगे मतलब ऐसा ना पानी छिड़कते होंगे करते होंगे. बट आई सॉ देयर इज नथिंग लाइक दैट. इट इज द एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज सो क्लियर इट इज सो क्लीन इट इज सो ब्यूटिफुल. सो जो ग्रीन एंड क्लीन का जो है ना न्यूजीलैंड का इट्स क्वाइट एप्ट.
1: जब मैं आया था So that was the 17th of February.
0: Wow.

0: भी याद है सर को?
1: हाँ डेट भी याद है. नहीं एक्चुअली सॉरी 15th of February.
0: सॉरी
1: 15th of February वाज द डे एंड 17th of February वाज द फर्स्ट डे जब मैं यूनिवर्सिटी में एंट्री किया था. मैं मेन रोड से एंट्री किया था जिधर वो लेफ्ट साइड पे स्टोन
0: पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैसी यूनिवर्सिटी,
1: वो वाला रास्ता. ये एग रिसर्च के ऑपोजिट वाला, वहां से मैंने एंटर किया था. So that was the 17th. But 15th को जब भी मैं पहुंचा था तब जस्ट लाइक यू मैं पहले क्राइस्टचर्च आया. ठीक है, क्राइस्टचर्च से कलेक्टिंग फ्लाइट था मेरा पामी का.
0: अच्छा, तेरा सीधा पामी.
1: हाँ, तो मैं क्राइस्टचर्च पे उतरा और जैसा कस्टम्स क्लियर हुआ तो ग्राउंड फ्लोर पे आया मैं. ठीक है, फिर मैंने बोला कि कनेक्टिंग फ्लाइट किधर है, तो आई हैड टू गो अपस्टेयर्स. मैं ऊपर गया और मैंने बोला कि मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहता. मेरे को बहुत भूख लगी थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहाऊं. मेरे को लग रहा था कि मैं अभी मैं फ्रेश होना चाहता हूं, अभी मेरे को कुछ खाना है और मेरे को सोना भी है. बट मैंने बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ना वॉशरूम देख रहा हूं, ना कुछ भी देख रहा हूं, ना मैं कुछ खाना देख रहा हूं. मैं पहले जाके अपने गेट पे जाके बैठता हूं. सो इट वाज अपस्टेयर्स एक लेवल पे और वो जहाँ पे मेरा गेट था वो है मतलब टर्मिनल में एक गेट है जहाँ पर एक ऐसी फ्लोर टू सीलिंग ऐसा ग्लास है और वहां से आपको एयरप्लेन दिखता है. ठीक है, रनवे दिखता
0: है, यू कैन सी दैट.
1: हाँ, बट मतलब ऐसा वाइड नहीं था, इतना एक्सपांस नहीं था, वो पतला सा ही था. और तब हो रही थी बारिश, ओवरकास्ट था, बारिश थी. और तभी मेरे को पहली बार लगा कि मैं ऐसे जगह में आया हूँ जहाँ पे वेदर हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा ओवरकास्ट रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है, हमेशा ग्लूमी उमी सा रहता है.
0: ओह माय गॉड, दैट इज डिप्रेसिंग.
1: हाँ, मैंने बोला कि यार मैं अभी मतलब 8 घंटे पहले, 8-10 घंटे पहले मैं चेंगी भी था. ठीक है, जो मजे किए मैंने एयरपोर्ट पे, बटरफ्लाई देखे, पॉड्स देखे, टर्मिनल देखे, जूल देखा, खाना खाया, घूमा मस्त. और सनी, एवरीथिंग वाज सनी. फिर मैंने एयरपोर्ट पे ये नज़ारा देखा वेदर पे. मैंने बोला कि ओके, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो सनलाइट ग्रीन और वो सब कुछ है ना, वो इधर कुछ दिखने वाला ही नहीं, इधर मेरे को सब कुछ ग्रे दिख रहा है. अब मेरे को सब कुछ वाइट, ग्रे, ब्लैक यही दिख रहा है. कोई अगर मेरे को तभी कहता कि तेरे को ये जो सीन दिख रहा है ना, दिस इज जस्ट वन पैलेट, दिस इज वन जस्ट वन
0: पैलेट, वन पैलेट करेक्ट.
1: और तेरे को इतने पैलेट मिलेंगे कि तू खुद डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा. मैं शायद नहीं मानता उसको, बट आई एम रियली हैप्पी कि
0: यू वर रॉन्ग.
1: हाँ, कि मेरे को ऐसे देखने को मिलता है. जब भी रेंगेटी की स्ट्रीट से अपन फील्डिंग की तरफ जाते हैं ना,
0: हाँ, हाँ.
1: तो जब भी शाम के टाइम में सनसेट दिखता
0: है, ओहो हो,
1: तभी वो रास्ता देखने का
0: बहुत अच्छा है. वहाँ पे कभी कभी ड्राइव करने में इशू होता है क्योंकि सन एकदम सामने आ जाता है.
1: But then you have to observe the colors.
0: I know, beautiful. और एक और बात बतानी है मुझे तुझे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एक गाना चलाते पहले.
1: अच्छा. आज ओके, ठीक है, मैं शुभ का गाना बजाता हूँ.
0: किसका?
1: शुभ.
0: शुभ.
1: शुभ.
0: हाँ.
1: आर्टिस्ट है.
0: आर्टिस्ट है.
1: पंजाबी गाने गाता है.
0: ओके, बजाइए.
1: ठीक है, उसका गाना बजाता हूँ. आई थिंक फेल फॉर यू. ठीक है, चलो सुनते.
0: फेल फॉर यू.
1: फेल फॉर यू.
0: वाह, ये तो इंग्लिश के आर्टिस्ट लग रहे हैं.
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं. ये कुछ पंजाबी गानों का ये इट्स अ थिंग कि
0: एक लाइन इंग्लिश की गुस्सा दो.
1: वो नहीं, वो तो होता ही है. बट गाने का टाइटल इज इंग्लिश.
0: अच्छा. बट गाना पूरा पंजाबी.
1: गाना पूरा पंजाबी है.
0: ठीक.
1: जैसे करण और जगह करना

0: गाने का नाम है, गाने का टाइटल है बॉयफ्रेंड, बट गाना शुरू होता है अबाउट अ गर्ल बीइंग सैट डाउन बाय हर पेरेंट्स और वो उसको लड़कों की फोटोज दिखा रहे हैं.
1: अच्छा.
0: कि ये पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या. एंड द एंटायर सॉन्ग इज दैट गर्ल सिंगिंग टू हर मदर एंड फादर एंड एवरीबॉडी दैट आई हैव आई लाइक समवन. इसीलिए गाने का नाम है बॉयफ्रेंड.
1: बॉयफ्रेंड
0: ठीक है इंग्लिश. एंड देन देन शुभ गप देयर इज वन सॉन्ग मुझे पसंद है, मुझे काफी पसंद है. गाने का नाम है वन लव. लेकिन उसमें गाने का इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है उसमें.
1: अच्छा, एक प्यार है ना उसका.
0: हाँ मतलब,
1: पर कुछ तो होगा ना एक प्यार से रिलेटेड
0: गाना है. हाँ, मुझे पता नहीं, मीनिंग पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक.
1: अच्छा.
0: बट इट सो दैट्स द ट्रेंड. सो ये गाने का नाम है फेल फॉर यू.
1: फेल फॉर यू ठीक है.

0: on it. So that was the song.
1: That was the song.
0: That was the song.
1: Haan, but I understood why it's called Fell for You.
0: Okay. ठीक है मेरे को अब तक गाने का मीनिंग नहीं मालूम बट मतलब बट आई अंडरस्टैंड
1: वो बोलता है ना कि मैं मतलब आई एम काइंड ऑफ द लिरिक्स काइंड ऑफ हिट द सेम सेंटेंस
0: राइट अभी जैसा वो एबी डिलॉन का गाना ठीक है एक्सक्यूजेस
1: एक्सक्यूजेस
0: ठीक है इंग्लिश गाना नहीं है वो ऑलराइट बट गाने का टाइटल एक्सक्यूजेस है सो है ट्रेंड है ये
1: ओके कूल अब मैं तेरे को जो बात बताने वाली थी हाँ तो जब मैं पामी आई थी तो उससे मतलब सबसे पहले व्हेन आई केम टू न्यूजीलैंड इन 2020 आई लैंडेड इन क्राइस्टचर्च सो व्हेन आई वाज लैंडिंग इन क्राइस्टचर्च लिटरली तो मैंने प्लेन से आप देखते हो ना कि कैसा लग रहा है अब नई कंट्री में आया
0: हूँ मेरे को विंडो सीट मिला नहीं था आई हैव नो आइडिया
1: अच्छा मेरे पास विंडो सीट था तो मैं देख रही हूँ कि कैसे है नीचे यू नो सब कुछ मुझे लिटरली आई कुड सी अ रिवर एंड द रिवर वॉज लिटरली ब्लूइश और लिटिल बिट ब्लूइश और ग्रेइश एंड इट वॉज सो क्लीन आई कुड सी फ्रॉम द टॉप इट वॉज सो क्लीन वाइका मारीरी
0: वीव पैटर्न रिवर
1: यस वीव पैटर्न रिवर
0: उसके ऊपर है ना रिसर्च हो रहा
1: है अच्छा
0: ओके
1: यू
0: गो ऑन फिर मैं बताता हूँ
1: ओके

0: तो रिवर फ्लो कर रहा है ऐसे करके और आसपास बहुत ब्यूटीफुल पेड़ है, फेब्रुअरी का टाइम है और हम ऐसे लैंड करें तो मुझे ऐसा लग रहा है यार ये तो पेंटिंग है, हम पेंटिंग के अंदर लैंड कर रहे हैं, मतलब इट वॉज सो ब्यूटिफुल.
1: मेरे को इसीलिए पता नहीं है, एज इन उस टाइम पे मेरे को इसलिए पता नहीं चला था बिकॉज मुझे सीट मिली थी एकदम लास्ट कोपचे की जिसमें विंडो नहीं था. तो मैं एकदम ऐसा घुट के बैठा था. मेरे बोला था मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नींद आ रही है. जब मैं प्लेन में घुसा था तो मेरे को सीट पता चली. मेरे को तो लगा था कि हाँ ये सीट कुछ ज्यादा ही क्लॉस्ट्रोफोबी लग रही है. बट मैंने बोला मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने वो एसी का वेंट अपनी तरफ किया, जैकेट लिया और सो गया. मैं फिर बाद में कब उठाया, जब भी अनाउंसमेंट हुआ कि अभी लैंडिंग की तैयारी हो रही है, क्योंकि बगल में जो बंदा बैठा था वो भी मोस्ट लाइकली वो भी इंडियन ही था. अच्छा. लग रहा था मेरे को. तो वो पता नहीं कुछ तो घिचमिड़ घिचमिड़ कर रहा था. तो उसके हिलने डुलने से मैं उठ गया था.
0: अच्छा.
1: एंड मेरे को पता था कि हाँ अभी उतरने का टाइम आ गया अपना, अभी अपन उठते हैं बस. सो आई डिड नॉट सी द लैंड व्हाइल लैंडिंग.
0: ओके. कभी तेरे साथ ऐसा हुआ, ऑफ टॉपिक, बट कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तेरे को एयर होस्टेस उठाने आई है कि बस अब खत्म हो गई है? ओके.
1: उतना कभी ऐसा हुआ ही नहीं.
0: मेरे साथ दो बार हुआ ऐसा. एक बार इंटरनेशनल फ्लाइट में, एक नॉन डोमेस्टिक फ्लाइट में. तो आई वेंट टू अ कंट्री इन अफ्रीका, आई वेंट टू केनिया. या आई वाज कमिंग बैक एंड आई वाज सो टायर्ड because I was so busy and moving around. मैं काम से गई थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टायर्ड हो गई. तो जब मैं आई तो मतलब आई वॉज स्लीपिंग कि फ़ोन बंद है, सब बंद है, सो जाओ. और आई थिंक मेरे को ये भी नहीं पता वो खाना कब लेकर आई और कब लेकर चली गई. लाइक आई डिड नॉट इवन टेक द फूड बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग, लाइक मतलब प्रोबेबली आई वॉज स्नोरिंग एंड स्लीपिंग मस्त एकदम. विंडो सीट मिला था, मैं सो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ. और दिल्ली में लैंड हो गया प्लेन.
1: अच्छा.
0: मतलब वापस आ रही थी, वो लैंड हो गया एंड आई डिडंट रियलाइज कि वो लैंड हो गया. फाइनली एयर होस्टेस हैड टू कम एंड टेल मी कि
1: मैडम उठ जाओ.
0: हाँ, मतलब मैं देखा मेरे आसपास की सीट खाली हो रही है, मतलब दो चार लोग थे प्लेन में वो भी जा रहे थे. तो यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया.
1: नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. प्लेन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ साथ.
0: क्योंकि आई ऑलवेज पुट माय सीट बेल्ट्स ऑन. आई कीप पुटिंग माय लाइक कीप माय सीट बेल्ट्स ऑन ऑलवेज. तो ऐसा है नहीं कि मुझे दोबारा से लगाने की जरूरत पड़ेगी बट टेक ऑफ हो रहा है या फिर लैंडिंग हो रही है. तो लगा हुआ है, मैं सोई हुई आराम से मस्त एकदम.
1: गोइंग ऑफ टॉपिक, मेरे को कल एक भलता सपना आया. पता
0: है भलता? व्हाट इज भलता?
1: भलता मतलब अजीब.
0: अजीब क्या सपना आया?
1: ओके. सो जब भी वो मार्वल यूनिवर्स का जो ट्रेंड था ना, वो जो फेज था ना मार्वल यूनिवर्स का, आयरन मैन एंड दिस एंड दैट, वो सब हल्क वल्क सब कुछ, तो हम लोग मार्वल मूवीज रेगुलरली देखते थे. मतलब मार्वल मूवी है देखने का ही देखने का. ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरी मूवी नहीं देखते थे. हम दूसरी मूवीज भी देखते थे. हम अच्छी मूवीज देख
0: भाई की मूवी को छोड़ के तुम सब देखते.
1: अरे भाई की मूवी भी देखी हम लोग ने.
0: ओ
1: हाँ, क्योंकि तभी कुछ और था नहीं.
0: अच्छा.
1: और हम लोग शिफ्ट हो गए थे. अरे मैं चला गया था बदलापुर, वो आ गया था अंबरनाथ. एंड वी वर लाइक यार इधर कुछ है भी कि नहीं है कि हम लोग खाली मतलब जाके नदी में बैठने गए. तो तभी टाइगर जिंदा लॉन्च हो गई थी.
0: टाइगर जिंदा ये कौन सी मूवी है?
1: भाई की मूवी है. नहीं, हाँ टाइगर जिंदा है लॉन्च हो गई.
0: एक तो टाइगर तो आई नो.
1: हाँ, तो टाइगर जिंदा है उसका सीक्वल है.
0: अच्छा.
1: क्योंकि टाइगर में दिस वाज अ क्लिफहैंगर कि टाइगर टपक गया.
0: अच्छा, टाइगर मर जाता है.
1: हाँ, बट दैट वाज अ क्लिफहैंगर.
0: ओके.
1: तो उसका सीक्वल आया टाइगर जिंदा है.
0: जिंदा है, जिंदा है,
1: जिंदा.

0: Anywho, so that was the time when we would wait. Or tabhi aisa regular Marvel movies aati thi. So this was kind of a highlight for us.
1: Acha.
0: तो मेरे को सपना आया कि मार्वल का कोई नया पिक्चर निकला
1: है. अरे वाह.
0: और मैं और मदन हम लोग जा रहे हैं अभी पिक्चर देखने को. और मैं खड़ा हूँ मेरे घर पे इधर न्यूजीलैंड.
1: अच्छा.
0: और मैं मस्त में बाहर देख रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे क्या मस्त कलर है आज. क्या मस्त कलर दिख रहा है आसमान में. और मैरी बोल रहा है तू टाइम पे निकलने वाला है कि तू खाली आसमान देखता रहेगा. बोला हाँ हाँ निकलता एंड देन बस खत्म, वो सपना खत्म हो गया.
1: ओके, सो बेसिकली सपने में तो मूवी देखने जा रहा था बट न्यूजीलैंड के स्काई के कलर्स ने तुझे इतना अट्रैक्ट कर लिया कि तू मूवी लेट हो गया मूवी के लिए.
0: नहीं
1: मतलब होते होते रह गया.
0: मैं हूं, वो उधर है
1: और तुम दोनों मूवी देख रहे हो. हाँ ऐसा होता है ना,
0: जाने वाले अभी
1: ऐसा होता है थिएटर में. Anyway, you play a game, play a song, and then I will tell you something interesting.
0: Achha.
1: On this.
0: Achha. Kaun sa gana bajao?
1: Usko ek ghazal baja dijiye.
0: Jayega nahi ye.
1: What?
0: Kiske saath jayega nahi?
1: Kiske saath nahi jayega? Teri personality ke saath.
0: Ek minute. Kya?
1: किसके साथ नहीं जाएगा गजल?
0: अभी जो गाने बज रहे हैं ना उसके साथ गजल बैठेगा नहीं बीच में.
1: अरे तो कोई थीम थोड़ी ना है.
0: ओके, सो अनदर पंजाबी सॉन्ग. ये गाना मेरे को एक्चुअली पसंद है.
1: अच्छा.
0: अगेन गाने का टाइटल है हे लव.
1: हे लव. अच्छा. अब देखते हैं उसमें क्या है.
0: ठीक है. सूखे का गाना.
1: ओके.
0: हे लव.
1: चलो ठीक है, सूखा सूखा ही लव.

0: सो इस गाने में मुझे हे लव समझ नहीं आया.
1: ओके.
0: मतलब कि जो भी गाने के लिरिक्स थे उसमें ऐसा हे लव जैसा कुछ समझ नहीं आया मुझे.
1: हे लव मतलब
0: हे लव.

0: Love.
1: हाँ मुझे समझ में आया, मतलब इंग्लिश
0: बुला रहा उसको
1: शायद, हाँ लेकिन उस गाने में नहीं बुला रहा, एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
0: अच्छा,
1: सो प्रोबेबली नॉट ऑल सॉन्ग्स आर टाइटल्ड वेरी वेल.
0: ये नहीं मालूम, वैसे आई हैव अ थ्योरी.
1: या
0: आई हैव अ थ्योरी बिहाइंड दिस कि द रीजन व्हाई ये ट्रेंड है कि गाना पंजाबी है लेकिन टाइटल इंग्लिश है, इसका रीजन ये है कि ये जितने भी गाने हैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो हीरोइन है वो भारतीय नारी तो नहीं लग रही, मतलब आई मीन दिस ना,
1: तो क्या हो गया,
0: तो मतलब ये हो गया कि उसको शायद से पंजाबी नहीं आती रहेगी ना.
1: अच्छा,
0: तो उसको समझाने के लिए कि गाना क्या है बस इंग्लिश टाइटल दे दिया कि गाने का द गाना है इज अबाउट लव या फिर गाना इज अबाउट आई फेल फॉर यू.
1: आई फेल फॉर यू फिर भी मतलब थोड़ा सा मीनिंग जा रहा था वहां पे, पर इसका नहीं जा रहा, बट एनीवे लेट्स नॉट यू नो डिस्करेज देम.
0: नहीं नहीं, आई एम
1: वो इंग्लिश में रखें हिब्रू में रखें हमें क्या जा रहा
0: है, कोई फर्क नहीं, मेरे को गाने पसंद है मैं सुनता हूं
1: बस.
0: सो ये गाना मेरे को पसंद है. एंड देन देयर इज आल्सो अनदर सॉन्ग बाय द सेम गाय अट्रैक्शन, वो भी पसंद है मेरे को.
1: अरे वाह, अब वो नेक्स्ट सॉन्ग क्या है?
0: नहीं वो नहीं बजेगा, वो शायद अगली बार बजाएगा मैं.
1: ओके, ब्रेक लेने का टाइम हो गया आई थिंक.
0: How is this happening? How are you keeping the time?
1: See, सीख रहे हैं हम समय के साथ.
0: अच्छा, all right, ठीक है. One or two break.
1: Break.
2: Community notices on MPR. Looking for a friendly way to spend your Tuesday mornings? At City Mission's Mind Matters, you can socialize and engage with a range of games and activities while enjoying a cuppa in a warm and welcoming environment for the 60 plus group. Give us a call on 020-454-8870. Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at mpr.nz or call 06357 9340.
3: Well, if sports is your thing, then tune on in to the Manawatu's People Radio for the fortnightly sports show with producer Aaron and Brian. What do we normally get up to, Brian?
4: We usually talk about the Manawatu rugby draws and results and like the central football and the Manawatu netball.
2: The Sports Guide on Manawatu People's Radio. Fridays at 3 p.m, Sundays at 12:30. Tune in weeknights at 8 p.m. for The Showcase, a chance for MPR to highlight popular episodes, significant milestones, and interesting snippets of station history. That's 8 p.m. weeknights. Check Facebook or Twitter for episode details.
5: Health Check from the BBC.
6: What is the idea behind it?
5: Discussing innovations in healthcare.
6: Can we live forever?
5: New discoveries.
6: Could losing weight be the key to fertility for some men?
5: And the latest medical research.
7: How many bacteria can be spread simply from shaking hands?
8: Are you the same person when you're 18 or 30 or 70?
9: That's an interesting question.
6: Now I want to ask you about something completely different.
5: Health Check from the BBC.
2: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on MPR.
0: All right.
1: We are back. तो और सुनाओ, ऑटम के अलावा क्या क्या हो रहा है?
0: ऑटम के अलावा, ऑटम के अलावा तो ज्यादा कुछ नहीं हो रहा.
1: इंडिया में ना आम आ गए हैं बहुत अच्छे.
0: लगा ही था मेरे को, लगा ही था मेरे को कोई ना कोई किधर ना किधर तो आम का टॉपिक अभी निकलेगा ही निकलेगा. As in I'm not saying it with you. तो सब लोग बोलते हैं यार आम आएंगे अभी, अभी आम आएंगे, अभी आम आएंगे,
1: लेकिन आते बहुत लेट है.
0: कभी भी आए, मतलब लोगों का अभी से ही चालू रहता है.
1: Of course, क्यों नहीं रहेगा यार? This is one of the most sought after fruits in the world.
0: ऐसा नहीं है.
1: Sort मुझे mangoes, okay, Indian mangoes.
0: Not all over the world. ऐसा
1: नहीं. No, not all over the world, as in. Okay, Indian mangoes are

0: sought after in the world.
1: Sure. Okay.
0: तो इंडिया में क्योंकि बहुत वैसे तो अभी हर सीजन में आपको आम मिलता है मतलब स्टोरेज का पर जो वो टेस्ट है ना और खासकर वो कुछ वैरायटीज ऐसी होती है जो कुछ दिनों के लिए आती है मतलब आपके पास मार्केट में वो 15 या 20 दिन के लिए होगी या एक महीने के लिए छोटे छोटे आम आते हैं इतने एक उंगली के साइज का आम आते हैं छोटे उंगली से थोड़े से बड़े होंगे शायद वो मोटे मोटे होते हैं और उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है वो बारिश में आते हैं जब सीजन खत्म हो रहा होता है बट यू नो वी यूज टू वेट फॉर दैट तो हम हर चीज पहले हम वेट करते थे अभी ये आएगा एक आम होता है उसका नाम होता है सफेदा वो आएगा वो थोड़ा सा हल्का हल्का वाइट होता है बड़ा वाला होता है बड़ा वाला मैंगो वो ठीक लगता है नॉर्मल खा लेते हैं फिर उसके बाद आता है दशहरी जो मेरा फेवरेट है इट इज वेरी स्वीट और टेस्टी होता है उसको चूस के खाते हैं फिर आते हैं चौसा ग्रीन कलर का आम होता है वो और वो भी खाते हैं बहुत ऐसे काट के या फिर
1: लंगड़ा होता है
0: एक लंगड़ा होता है
1: एक तोता पाए
0: एक होता तोता पाए होता है और एक ये होता है छोटा वाला क्या बोलते हैं उसको जो इतना आम होता है
1: वो नहीं पता
0: तोता पाए इज लाइक उसका शेप बहुत अलग सा होता है ना
1: उसका जो शेंडी होता है
0: शेंडी
1: वो तोते की चोंच की तरह होता है हाँ
0: हाँ
1: इसके लिए उसका तोता पाए
0: रत्नागिरी आता है केसर आता है कितने आम आते हैं एक्चुअली इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैंगोस मैंगो वैरायटी इन द वर्ल्ड
1: ओके
0: आई एम नॉट सरप्राइज्ड
1: सी इवन आई लाइक मैंगोस इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट दैट आई डोंट फॉन ओवर मैंगोस
0: Okay.
1: कोई मेरे को खिलाएगा I'll be very happy. हाँ, मस्त लगता है खाने को बहुत अच्छा लगता है मेरे को बट ऐसा नहीं है I'm not crazy behind it. Fan following नहीं है मेरा ऐसा आम के लिए
0: okay. हाँ मिला तो नहीं मिला
1: because see I don't even remember the last time I had hapu samba
0: what is that
1: Alfonso mangoes
0: Alfonso
1: mangoes are called as hapu sam.
0: Oh my god, Alfonso is better.
1: अरे लेकिन मराठी में उसका हापुस बोलते हैं ना तो मैं क्या करूँगा उसको?
0: अच्छा हापुस, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ. मैंने कहीं देखा है किसी जगह पे.
1: क्या?
0: हापु साम.
1: हाँ दुकान पे हिंदी मराठी में ही लिखा रहा था. हापु साम, हापु सांबा.
0: Okay, फिर.
1: वैसे ऐसा पंजाबी में कुछ और अदर मतलब कुछ और वर्ड है क्या आम के लिए
0: नहीं आम ही बोलते हैं
1: अच्छा ओके
0: और मराठी में
1: उसको आंबा बोलते हैं
0: आंबा तो हम कई बार उसे अम्मी ऐसे ना छोटी होती है तो अम्मी बोलते हैं बट ग्रीन वाले जो आम होते हैं ना अचार वाले जिसकी चटनी भी बनती है
1: उसको कैरी बोलते हैं
0: हम अम्बी बोलते हैं
1: उसको कैरी बोलते हैं
0: अच्छा हम अम्बी बोलते हैं
1: मराठी में उसको कैरी सॉरी हिंदी में उसको कैरी कहते हैं मराठी में उसको कैरी कहते हैं
0: कैरी
1: या
0: ओके नहीं हम लोग उसको पंजाबी में ऐसे ही बोल देते हैं अम्बी
1: ओके
0: तो कहने का मतलब ये है कि आम जैसी चीज अब जैसे मेनी पीपल दे गो टू वियतनाम एंड दे जस्ट लव द कोकोनट वाटर
1: इधर मिलता है बॉटल में
0: नहीं मिलता है पर वो फ्रेश पीने का मजा ही अलग है ना तो ऐसे आप जहां जाते हो वहां का फ्रूट खाओ तेको पता है मेरे को लीची खाए हुए कितने साल हो गए
1: हाँ इधर आई थिंक मैंने एक ही बार खाई है
0: अच्छा खाई है
1: हाँ वैसे ही इंडियन स्टोर में मिली थी अभी तो मेरे को याद भी नहीं है कौन से स्टोर से इंडियन स्टोर से मिली थी ज्यादा नहीं ली थी मैंने थोड़ी सी ली थी और बस खा लिया और फिर
0: फ्रोजन मिली थी
1: नहीं फ्रेश
0: अरे वाह
1: तभी इंपोर्ट की थी एंड मैं जब इंडिया गया था तभी मैंने खाया रहेगा बस लीची का आइसक्रीम मेरे को पसंद है ओके
0: लीची का आइसक्रीम
1: ओके अब भी वही बोलने वाला था मैं ऑकलैंड में ना एक जगह है अभी मैं वो स्ट्रीट का नाम भी भूल गया वो स्ट्रीट का नाम मैं एक दुकान से याद रखता हूँ
0: अच्छा
1: देयर इज दैट फ्रोजन आइसक्रीम प्लेस व्हाटएवर वो रात तक खुली रहती है
0: ओके
1: इसीलिए मेरे को पता है

0: वहां पे लीची आइसक्रीम मिलती है और वो बहुत अच्छी बनाता है।
1: मैंने मैंने ऐसे बहुत सारे फ्लेवर सुने हैं
0: जो वो मुझे रोल आइसक्रीम।
1: अच्छा अच्छा रोल, वो जो रोल करके
0: रोल करता
1: हूं। हां अच्छा अच्छा अच्छा आई गेट इट आई गेट इट। मैंने एक चीज देखी है कि आजकल बड़े अलग-अलग फ्लेवर्स डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आ गए हैं।
0: किस में?
1: आइसक्रीम्स में।
0: हां
1: लाइक माचा, चलो माचा तो ठीक है मतलब।
0: हां बिकॉज़ अ लॉट ऑफ द आइसक्रीम्स दीस डेज इज नॉट आइसक्रीम।
1: अच्छा इट इज,
0: इट इज फ्रोजन प्रोडक्ट।
1: ओके
0: जैसे यच ये जो रोलिंग आइसक्रीम जो है ना, इट्स नॉट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं है वो।
1: ठीक है
0: इट इज फ्रूट पल्प मे बी क्रीम या फिर दूध and all of this is mashed but it is done on a cold surface.
1: Okay haan taki wo bar bar jam jaye
0: haan to wo jo rather than that becoming a smoothie that becomes frozen part that feels like an ice cream hota wo smoothie hai lekin ice cream nahi hota wo isiliye you are able to get a lot of flavors for anything to become an ice cream you have to whip it so that uske andar air ye ho jaye amalgamate ho jaye
1: okay
0: iske liye ghumate usko usko time lagta hai
1: time lagta hai
0: ha lekin ye jo baki cheez hoti hai it's not ice cream jaise gelato gelato is not gelato इसलिए जिलेटो में आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं।
1: मैं कभी गई नहीं जिलेटो।
0: अरे जगह नहीं है कोई शहर
1: मतलब
0: नहीं।
1: मैंने कभी खाया नहीं जिलेटो।
0: हाँ तो इसीलिए there are other flavors।
1: ओके
0: ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम में फ्लेवर्स नहीं है।
1: एक मैंने एक बार बहुत अजीब सा फ्लेवर खाया था गुआवा आइसक्रीम।
0: ओके
1: मुझे लगा मैंने मंगवा तो ली लगा यार मैं खा पाऊंगी क्या नहीं एंड एक और चीज थी गुआवा आइसक्रीम विद कोक सिरप। कोक होती है ना मरीज।
0: साउंड्स हॉरिबल
1: बट हमने खाई एंड इट वाज सरप्राइजिंगली टेस्टी।
0: टेल मी ये दिल्ली में मिला था।
1: हाँ तो
0: ओके नहीं ठीक है अच्छी बात है।
1: अरे टेस्टी थी।
0: आई एम श्योर जैसे दूध सोडा भी टेस्टी होता है।
1: दूध सोडा हाँ लोग पीते लोग वो कोक सोडा पीते
0: which
1: okay ठीक है अभी
0: दूध कोक
1: दूध कोक वो कहते शक्ति आ जाएगी और ठंडक भी आएगी।
0: हां शक्ति आएगी और ठंडक भी आएगी।
1: हां अब बताओ कौन सा गाना सुना रहे हो
0: अभी? भिक्की कौशल का एक गाना है।
1: ओके वाओ
0: बैड न्यूज़ करके एक पिक्चर है।
1: बैड न्यूज़ ओके
0: उसका गाना है जानम
1: जानम जानम देख लो।
0: नहीं वो वीर जरा का गाना है। बहुत अच्छा गाना
1: है। नहीं वो उतना अच्छा नहीं लगा रहे हम
0: नया कुछ
1: सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके
0: ऑलराइट

0: तो ये गाना मतलब ठीक है, it was very slow.
1: I like the singer.
0: Who's the singer?
1: बहुत ट्रेंड में आजकल.
0: क्या नाम है?
1: विशाल मिश्रा.
0: Okay.
1: मुझे इसका आवाज अच्छा लग रहा है.
0: क्यों?
1: वो अपनी आवाज को बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट कर पाता है.
0: ओके. मतलब डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉन्ग.
1: यप.
0: वाओ.
1: और मेरे को ऐसा लगता है.
0: तूने अभी तक कौन से उसके वो देखे हैं रिजल्ट, मतलब कौन से उसके ऐसे वो देखे हैं गाने?
1: देखे
0: मतलब सुने, सुने.
1: अच्छा. Our beloved रणवीर कपूर.
0: Oh my God.
1: उनकी एक पिक्चर आई थी, एकदम बलती पिक्चर आई थी.
0: बलती?
1: हाँ.
0: कौन सी?
1: Animal.
0: Oh yeah yeah, that was बलती. Whatever बलती is.
1: So animal is बलती.
0: So that's what I'm saying.
1: Yeah.
0: कि whatever बलती is, it actually sounds कि it is apt for that movie.
1: Yeah. उस पिक्चर में एक गाना, ठीक है, गाने का नाम है पहले भी मैं, रोमांटिक गाना है.
0: हाँ, पहले भी मैं. हाँ हाँ, याद है मुझे.
1: नाइस सॉन्ग.
0: अच्छा सॉन्ग है वो.
1: अच्छा गाना.
0: वो इन्होंने गाया?
1: या वो इन्होंने गाया.
0: अच्छा. विशाल
1: मिश्रा.
0: मिश्रा.
1: ओके. एंड देयर इज दिस वन सॉन्ग, मतलब नया गाना नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है, बट समझ ले 3 या 4 साल पुराना रहेगा. And I kept feeling that ये गाना अर्जुन कनुंगो, there is this artist, singer, pop artist, उसने गाया है.
0: अच्छा.
1: And I kept feeling कि यार सही है, अगर अर्जुन ने गाना गाया तो अच्छी बात है, good. मतलब मेरे को पता नहीं था वो बॉलीवुड में भी गाना गाता है. He is actually वो अंग्रेजी गाने को बनाता है, हिंदी भी गाता है, बट वेस्टर्न
0: ज़्यादा है.
1: तो मेरे को लगा था सही है, ठीक है, बट नहीं. दैट सॉन्ग वाज आल्सो और इज आल्सो सॉन्ग बाय विशाल मिश्रा. सो विशाल मिश्रा रिमाइंड्स मी ऑफ अर्जुन, एंड विशाल मिश्रा आल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ एश किंग. बट जब ही आई लिसन टू विशाल मिश्रा, I like listening to Vishal Mishra.
0: Okay. मतलब उसी के सॉन्ग सुनने का बार बार मन करता है?
1: नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगा. It's just that, like I said, वो modulate बहुत अच्छे से करता है. वो

0: वो एक एक वर्ड को समझता है,
1: ये बोलोगे आप।
0: और अब मतलब ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाना गा रहे हैं, और कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाने का जो मीनिंग है उसके इमोशंस के साथ, तो इमोशंस के साथ गा रहे हैं, तो द मीनिंग कम्स आउट वेरी वेल।
1: देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई डोंट रियली लाइक अबाउट मेनस्ट्रीम मूवीज या मूवी के गाने।
0: अरे हाँ, आजकल तो
1: नहीं, देयर इज दिस वन पर्टिकुलर थिंग, और ये ऐसा नहीं कि अभी से ही हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई दैट इज, कि कोई एक अच्छा सिंगर है उससे गाने गवाएंगे, फिर उसी के गाने चलते रहते हैं, ठीक है। वो गाने बहुत अलग अलग के गाएगा, अलग टाइप के गाएगा, बट फॉर अ पीरियड ऑफ से 5, 7, 10, 12 ईयर्स बस उसी के गाने चलते रहते हैं। गाने बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए तो वो ट्रेंड में रहता।
0: एग्जैक्टली।
1: एंड देन सडनली वो फिर बंद हो जाता, एंड देन सम सिंगर सडनली
0: ही टेक्स अ ब्रेक ना,
1: नहीं, एंड देन सडनली अ न्यू सिंगर इज इन ट्रेंड नाउ। जैसे
0: आई डोंट नो,
1: अब जैसे जैसे थोड़े टाइम पहले तक मोहित चौहान वॉज एवरीवेयर, ठीक है, उसके बाद में अरिजीत सिंह वॉज एवरीवेयर, ठीक है। अभी अरिजीत सिंह इज नॉट दैट मच, उतना ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, जितना पहले था, ठीक है। अभी विशाल मिश्रा का ट्रेंड शुरू हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी तक आया नहीं है वहां पे,
0: पर जैसे तूने बताया ना कि वो जैसे गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद,
1: एंड इट्स इट हैज नथिंग टू विद द सिंगर्स,
0: इट इज टू डू विद देयर
1: इंडस्ट्री, राइट। माय क्वॉम इज, और ये मैं पहले बोल चुका हूँ, माय क्वॉम इज, मेरे को ऐसा लगता है कि अ गुड सिंगर डेवलप्स विद हिज एज, हिज सिंगिंग मैच्योर्स विद हिज एज।
0: आई वुड से द सेम फॉर एन एक्टर,
1: सेम फॉर एन एक्टर,
0: क्योंकि आर्टिस्ट हो ना आप,
1: राइट।
0: तो आपको जैसे सीखना पड़ता है, आपको ब्रेक लेना पड़ता है।
1: हाँ, अभी जैसे के ठीक है, वो जब भी आया था तभी वो जिस तरह से गाना गाता था, ठीक है, एंड देन टुवर्ड्स द पीक, मतलब एब्सोल्यूट पीक, द इमरान हाशमी फेस, उस तरह से वो वाले गाने उसने जिस तरह से गाए हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, बट देन यू कैन सी कि हाउ ही हैज मैच्योर्ड। पहले भी ऑफ कोर्स पहले भी बहुत अच्छे गाना गाता था, बट देन द सिंगर डेवलप्स अ फ्लेवर, राइट।
0: और एक यू नो जो उसके श्रोता होते हैं, जो उसको सुनने वाले होते हैं, वो पहचान जाते हैं,
1: राइट,
0: और उनको समझ में आता है कि अभी क्या इमोशंस है, right. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग में ऑफ कोर्स सब कुछ जरूरी है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा जरूरी है, लिरिक्स जरूरी है, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर होता है ना, जो भी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में गा रहा हो, बट यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड द इमोशंस।
1: यस, इसीलिए काफी बार काफी सारे गाने दो अलग सिंगर से गवाए थे।
0: अच्छा, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट।
1: हाँ, ये नहीं पता है जस्ट टू एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर, बट होता है ऐसे, बहुत बार होता है, और दोनों गाने बहुत फेमस होते हैं। ऑन टॉप ऑफ माई हेड मेरे को अभी याद आएगा तो मैं याद दिलाता हूँ, एक सलमान खान की पिक्चर आई थी लकी,
0: हाँ हाँ याद है मुझे,
1: ठीक है, उसमें थी स्नेहा उलाल,
0: लकी लिप्स, एक गाना भी था उसमें,
1: तो उसमें गाना है सुन जरा, ठीक है, वो दो सिंगर्स ने गाया, एक सोनू निगम ने, ठीक है, तो पहले सोनू निगम का फेमस गाना,
0: अच्छा,
1: ठीक है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलराइज किया ही नहीं गया था, या फिर हुआ नहीं था, या फिर मेरे को मालूम नहीं है कि सेम गाना अदनान सामी ने
0: भी गाया है।
1: आई पर्सनली प्रेफर अदनान सामी का गाना,
0: ओके,
1: आई डोंट नेसेसरीली लिसन टू अदनान सामी सॉन्ग्स, वेरी टैलेंटेड सिंगर अगेन, बट दैट पर्टिकुलर सॉन्ग I prefer listening to the Adnan Sami version.
0: ऐसे बहुत सारे, नहीं ऐसा पहले भी होता था, ये तो बहुत सारे बहुत पुराना ट्रेंड है,
1: हाँ.
0: कि अलग अलग सिंगर से गवाओ और देखो कि, क्योंकि हर किसी का पिच अलग है, हर किसी की आवाज अलग है और लोगों को पहचान में आती है.
1: तो द पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग इज कि ये जो अब फ्लेवर निकालते हो ना, ये 10 साल हम खाली मोहित चौहान को सुनेंगे, और उसके बाद में अपन खाली अरिजीत सिंह को सुनेंगे, और उसके बाद में अपन खाली विशाल को सुनेंगे, और उसके बाद में अपन खाली सोनू को सुनेंगे. रादर देन डूइंग दिस, व्हाई नॉट हैव देम सिंग एट द सेम टाइम. अरिजीत सिंह को नहीं गवाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
0: ही शुड रिमेन इन द सीन.
1: हाँ, ही शुड रिमेन, ही शुड स्टे इन द सीन, राइट? That is how, that is what my point is.
0: But no, they do stay in the scene. वो थोड़ा break लेते हैं.
1: नहीं, किधर? Where is Mohit Chauhan?
0: Tell me the last. अभी हाँ. Actually, Mohit Chauhan, हाँ, सही बोल.
1: Tell me where is Sonu Nigam?
0: Sonu Nigam. Oh, he has disappeared. That's correct.
1: वही तो मैं कह रहा हूँ. तो it is not the singers.
0: But he was a very, उसका voice बहुत ही unique था.
1: अभी भी अच्छा है.
0: हाँ,
1: अभी भी काफी अच्छा है.
0: हाँ.
1: अभी भी he is very talented.
0: तो
1: ऐसा नहीं बोल सकते अपन.
0: तो आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं?
1: अभी मैं कौन सा सॉन्ग सुना रहा हूँ? ओके, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आई है.
0: 3 आ गई है?
1: हाँ, 3 भी आ गई है.
0: चलो गुड.
1: अभी नहीं है,
0: टाइम पास
1: हो गया उसको. टाइम हो गया अभी उसको.
0: अच्छा, टाइम भी हो गया.
1: हाँ, टाइम भी हो गया उसको.
0: गुड, टाइम पास.
1: उसका गाना है, और उसका गाना है जानम समझोना.
0: समझोना, ओके.
1: तो अपन वो सुनेंगे और उसके बाद में अपने को रैप मारना पड़ेगा.
0: अरे क्या बात कर रहे हैं, टाइम हो गया.
1: हाँ, टाइम हो गया है. तो अगर गाना फिट होएगा तो मैं फिट करेगा, अगर फिट नहीं होएगा तो मोस्ट लाइकली वो गाना अगली बार बजेगा. तो मनवाटू, धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू अस. और थोड़ा बाहर निकलो, थोड़े रंग देखो,
0: ऑटम के रंग देखो, पतझड़ के
1: ऑटम के रंग देखो, सेल्फी वेल्फी निकालो. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी आज मिलने के लिए.
0: थैंक यू मलार जी, और थैंक यू मनवाटू. फिर मिलते हैं अगले हफ्ते.
1: फिर मिलते हैं अगले हफ्ते.
0: ओके, बाय.